0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
1: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।